पुणे 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है, इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है, तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

0: भक्तिमय सकाळमध्ये पुन्हा एकदा स्वागत आहे. केली अणुधुनी 90.4 FM वरती तुम्ही ट्यून इन आहात आणि आता आपण आध्यात्मिक विचार ऐकू.
1: लगन का महत्व. आसमां में ऊंची उड़ान भरना हो या सात समंदर लांघकर पार जाना हो तो मन में चाहिए लगन. जी हाँ, लगन. मन में सहस्र गुना शक्ति पैदा करने वाला शब्द है लगन, जिसके पीछे साहस धैर्य जैसे गुण परचाई की भांति पीछे पीछे आते हैं. जब मन में लक्ष्य के प्रति अटूट लगन पैदा हो जाए तो कुछ भी पाना नामुमकिन नहीं. लगन अर्थात कार्य करने के लिए तीव्र इच्छा शक्ति होना, बाधाओं से डरे बिना उत्साह के साथ काम में डटे रहना, लक्ष्य के पाने तक मन लगाकर काम में लगे रहना, दिल व जान लगाकर रुचि से किसी भी काम को मगन होकर करना भी लगन है. लगन प्रगति और विकास की नींव है. नींव खेल अध्ययन साधना और शोध कार्य में लगन ईंधन के समान कार्य करती है. कार्य को शीघ्रता से पूर्ण करने के लिए लगन बहुत आवश्यक है. जब तक लगन रूपी अगन अर्थात अग्नि प्रज्वलित ना हो तब तक शुरू किए गए कार्य को गति नहीं मिलती, ना ही सिद्धि. ये व्यक्ति को ऊर्जावान बनाती है तथा काम की गति को तेज करती है, जिससे कम समय और शक्ति में ही योजना साकार हो जाती है. लगन से रास्ते की बड़ी बड़ी बाधाएं छोटे लगने लगती है. किसी भी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए लगन से बढ़कर कोई श्रेष्ठ संगी साथी नहीं होता. इसे हिम्मत साहस आत्मविश्वास तथा परिश्रम जैसे यशदायी गुण सहज पैदा होते हैं. लगन मेहनत की महसूसता को कम करती है और हर्ष और उत्साह से कार्य करने के लिए प्रेरित करती है तथा साथ साथ बल भी देती है. लगन साधारणता में अद्भुतता भर देती है. लगन के बल पर असंभव कार्य भी सहज संभव हो जाते हैं. दीवार से हजारों बार गिरने वाली नन्ही चींटी लगन से आखिर दीवार पर चढ़ ही जाती है. संसार को मूल्यनिष्ठ बनाने की लगन ने दादा लेखराज को परमात्मा का साकार माध्यम बनाकर प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के रूप में संसार के सामने प्रस्तुत किया. अतः कठिनतम लक्ष्य को पाने लगन का दामन थामिए और मन चाहा फल पाइए. ऐसी हमारी आपके लिए हार्दिक शुभकामनाएं हैं.

0: वेणुधुनी 90.4 एफएम के एलई गणसू पे आप ट्यून है और अभी हम सुनेंगे ऑल इंडिया रेडियो के सहयोग से प्रस्तुत होने वाले न्यूज।
1: लेकिन नई नीति के अनुसार ये पुरस्कार राष्ट्रीय राजधानी के बाहर दिए जा रहे हैं। एकता नगर में आयोजित समारोह में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना दर्शाते हुए देश भर से सिनेमा जगत की प्रतिभाएं भाग लेंगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति वरिष्ठ फिल्म अभिनेता अनंत नाग को वर्ष 2024 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी प्रदान करेंगी।
2: ऐतिहासिक 72वें राष्ट्रीय फिल्म समारोह के लिए भव्य मंच सज चुका है। यह समारोह वर्ष 2024 की सर्वश्रेष्ठ सिनेमाई कृतियों को सम्मानित कर रहा है। इस वर्ष की प्रमुख घोषणाओं में आर्टिकल 370 को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म चुना गया है, जबकि इसी फिल्म के लिए यामी गौतम ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब जीता है। मलयालम फिल्म ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और हिंदी फिल्म चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार हासिल किया है। राजकुमार पेरियासामी को फिल्म अमरन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और तेलुगु फिल्म कल्कि 2898 एडी को सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म चुना गया है। रणदीप हुड्डा को स्वातंत्र्य वीर सावरकर के लिए सर्वश्रेष्ठ पदार्पण निर्देशक चुना गया है। गैर फीचर श्रेणी में मराठी फिल्म भंगार को सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म, संताली फिल्म आंगन के लिए रविराज मुर्मू को सर्वश्रेष्ठ पदार्पण निर्देशक और आनंद एल राय को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एकता का प्रतीक के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक चुना गया है। एकता नगर से चिराग भुरनिया के साथ खूंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मादक पदार्थ रोधी कार्यबल प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर श्री शाह लखनऊ और देहरादून में स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के नए क्षेत्रीय परिसरों का शिलान्यास भी करेंगे।
3: सामूहिक संकल्प साझा दायित्व विषय पर आधारित इस दो दिवसीय सम्मेलन में मादक पदार्थ रोधी कार्यबल को सौंपे गए लक्ष्यों की प्रगति तथा देश भर में मादक पदार्थों की तस्करी और उनके दुरुपयोग से निपटने के लिए की गई पहलों पर चर्चा की जाएगी। कि इस सम्मेलन में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के प्रमुख भाग लेंगे। इस चर्चा से भाग लेने वाले राज्यों, विभागों और संस्थाओं को अगले 3 वर्षों में देश भर में मादक पदार्थों की तस्करी से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए नए संकल्प के साथ आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। यह राष्ट्रीय कार्यक्रम मादक पदार्थों के दुरुपयोग से निपटने और नशा मुक्त भारत के संकल्प को साकार करने के लिए स्वापक नियंत्रण ब्यूरो और मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के बीच भविष्य के लिए तैयार साझेदारी को और मजबूत करेगा। सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार नीदरलैंड्स और जर्मनी साझेदार देश के रूप में तथा देश के 14 राज्य इसमें भाग लेंगे। एक रिपोर्ट।
4: 6 केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों को भी साझेदार के तौर पर आमंत्रित किया गया है। इस दौरान 25 सितंबर तक 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी भी आयोजित होगी, जिसमें टिकाऊ और जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन से जुड़ी आधुनिक तकनीकों और समाधानों को प्रदर्शित किया जाएगा। पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा दूसरा अंतर्राष्ट्रीय वॉश सम्मेलन 2026 भी आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन में पेयजल की उपलब्धता, स्वच्छता और जन स्वास्थ्य जैसे विषयों पर चर्चा होगी। आयोजन में जल संसाधनों के बेहतर उपयोग, जल सुरक्षा, जलवायु संबंधी जोखिम, आधुनिक तकनीक, सामुदायिक भागीदारी और जल बुनियादी ढांचे के लिए नए वित्तीय मॉडल सहित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श किया जाएगा। सौम्या की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। इस दौरान जनसेवा से देश सेवा मंत्र के साथ सेवा और सुशासन उनका ध्येय रहा है। इसी सोच के साथ सरकार का वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प है। ये प्रतिबद्धता समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रही है। इससे लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आकाशवाणी समाचार की विशेष श्रृंखला में आज हम उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना की चर्चा कर रहे हैं।
5: कर्नाटका भारत के प्रमुख औद्योगिक केंद्रों में से एक बनकर उभरा है। राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स, जैव प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा और ऑटोमोटिव विनिर्माण सहित विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण वृद्धि को बढ़ावा दे रहा है। उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत राज्य का लक्ष्य सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माण और इलेक्ट्रॉनिक्स घटकों में बड़े निवेश के साथ भारत की सेमीकंडक्टर राजधानी बनना है। वहीं कपड़ा उत्पादन में कर्नाटका तकनीकी और स्मार्ट वस्त्रों के उत्पादन के माध्यम से वस्त्र क्षेत्र में अपनी निर्यात क्षमता को बढ़ाने की योजना निशाना बना रहा है। कर्नाटक बड़े स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक वाहन बैटरी और इलेक्ट्रिक वाहन पुर्जों के निर्माण के साथ इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण में अग्रणी है। फार्मास्यूटिकल सामग्री निर्माण के लिए पीएलआई योजना चिकित्सा उपकरण निर्माण व्यवसाय को प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। राज्य सौर, पवन, हरित हाइड्रोजन और बायोमास ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। यहां सौर विनिर्माण और सतत ऊर्जा परियोजनाओं के लिए पीएलआई योजना के अंतर्गत सब्सिडी प्रदान की जा रही है। बेंगलुरु से तुकाराम गौड़ा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अवसर पर कई देशों के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। बैठकों में क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों के साथ द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने पर चर्चा हुई। हमारी संवाददाता ने बताया है कि डॉ. जयशंकर ने फ्रांस, इक्वाडोर, स्लोवाकिया, हंगरी और स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्रियों के साथ बातचीत की।
6: चर्चाओं में यूक्रेन और खाड़ी क्षेत्र की स्थिति, आर्थिक सहयोग तथा बहुपक्षीय मुद्दे प्रमुख रहे। फ्रांस के साथ बैठक में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार पर भी विचार विमर्श हुआ। स्विट्जरलैंड के साथ बैठक में भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ, व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने के बाद आर्थिक संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की गई। इससे पहले डॉ. जयशंकर ने भारत और वाइसेग्राड समूह के देशों की पहली विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लिया। भारत और समूह के चार देशों पोलैंड, हंगरी, स्लोवाकिया और चेक गणराज्य ने राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, शिक्षा और लोगों के बीच संपर्क में सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। डॉ. जयशंकर 26 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा की आम चर्चा को संबोधित करेंगे। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: भारत घरेलू ऊर्जा उपलब्धता, बुनियादी ढांचे की मंजूरी, जल के पुनरुपयोग और महत्वपूर्ण खनिजों की सुरक्षित आपूर्ति श्रृंखलाओं से संबंधित चार सर्वसम्मत प्रस्तावों को अपनाने में G20 के अन्य देशों के साथ शामिल हो गया है। ये प्रस्ताव अमेरिका में टेक्सास के ह्यूस्टन में व्हाइट हाउस नेशनल एनर्जी डोमिनेंस काउंसिल, ऊर्जा और गृह विभाग तथा पर्यावरण संरक्षण एजेंसी की 3 दिन की बैठक में पारित किए गए। निर्वाचन आयोग पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची से नाम हटाए गए लोगों के आवेदनों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करने के लिए न्यायाधिकरणों की संख्या बढ़ाने की योजना बना रहा है। राज्य में अभी 19 न्यायाधिकरण हैं। आयोग आज सर्वोच्च न्यायालय को यह बता सकता है कि इनकी संख्या बढ़ाकर कम से कम 42 की जानी चाहिए। इसमें राज्य के प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र के लिए एक न्यायाधिकरण हो। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कल मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर बैठक की। उसमें दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि तथा इससे जुड़े अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। बिहार के जमुई जिले में एक नाबालिग छात्रा के साथ कथित छेड़छाड़ और दुर्व्यवहार के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है। एक रिपोर्ट।
7: जमुई के पुलिस अधीक्षक विश्वजीत दयाल ने बताया कि वायरल वीडियो की जांच के बाद भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि फरार आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दीप्ति मोनाली के नेतृत्व में विशेष जांच दल छापेमारी कर रहा है। वीडियो को सोशल मीडिया से हटाने की कार्रवाई भी की जा रही है।
8: जो वीडियो सोशल मीडिया पर है उसको टेक डाउन करने के लिए विधि सम्मत कार्रवाई हम लोग के द्वारा कर दी गई है। जो SIT जो गठित हुई है वो लगातार छापामारी में है। अभी तक वीडियो के आधार पर 3 लोगों को अभी हिरासत में लिया गया। वीडियो के आधार पर कुछ और लोगों को चिन्हित कर लिया गया है, उनकी भी गिरफ्तारी जल्दी जाए।
7: खेल मंत्री और जमुई विधानसभा क्षेत्र से विधायक श्रेयसी सिंह ने भी घटना की निंदा की।
9: मैं जमुई के प्रशासन को निर्देशित किया है कि जितनी और कार्रवाई करने की आवश्यकता है, यानी कि जो दोषित लोग हैं, जो आज भी खुला घूम रहे हैं, उनको भी टावर लोकेशन से पकड़कर उनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित शाम तक करने का कार्य करें।
7: सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: ब्रिटेन ने ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के हमलों से निपटने के लिए सऊदी अरब को सीमित सैन्य सहायता देने पर सहमति जताई है। हूतियों के हमले बढ़ने के बाद सऊदी अरब ने ब्रिटेन से मदद मांगी थी। इसके अंतर्गत ब्रिटेन आने वाले दिनों में एक वॉयजर विमान तैनात करेगा। ये विमान हवा में विमानों में ईंधन भरने की सुविधा देगा। ब्रिटेन और सऊदी अरब लंबे समय से सैन्य सहयोगी हैं। जापान एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज स्वर्ण पदक मुकाबले में श्रीलंका से खेलेगी। ये मैच भारतीय समय के अनुसार सवेरे 10:30 बजे से खेला जाएगा। भारत ने बांग्लादेश को और श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। भारत ने अब तक 4 रजत और 2 कांस्य समेत कुल 6 पदक जीते हैं। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना गहरा दबाव का क्षेत्र अगले 24 घंटे में और मजबूत होकर गहरे दबाव में बदल सकता है। इसके प्रभाव से आज तटीय आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में तेज वर्षा हो सकती है। झारखंड में आज कर्म पर्व पूरे पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रकृति, जनजाति, संस्कृति और भाई बहन के पवित्र स्नेह का प्रतीक कर्म पर्व झारखंड की समृद्ध लोक और जनजातीय परंपराओं से गहराई से जुड़ा हुआ है।
10: कर्म पर्व आज पूरे राज्य में धूमधाम से मनाया जा रहा है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने रांची के बेड़ों में आयोजित कर्म पूर्व संध्या समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर प्रदेश वासियों को कर्म पर्व की शुभकामनाएं दी और प्रकृति संरक्षण का संदेश दिया। मोराबादी के दीक्षांत मंडप में भी कर्म पूर्व संध्या समारोह का आयोजन किया गया। इस पर्व पर बहने भाई की सुख समृद्धि और लंबी उम्र की कामना के साथ निर्जला व्रत रखती हैं। आज शाम अखड़ा में पवित्र कर्म वृक्ष की स्थापित की जाएगी, जिसके बाद रात भर सामूहिक नृत्य और पारंपरिक गीतों का दौर चलेगा। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
11: धन्यवाद मुकेश। सोनिया गांधी का मतदाता सूची में नाम शामिल होने की जांच की मांग की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। जनसत्ता की सुर्खी है, सोनिया गांधी को झटका, अदालत ने रद्द किया मजिस्ट्रेट का आदेश। हिंदुस्तान का शीर्षक है, सोनिया को वोटर बनाने का केस खुला। 1980 में मतदाता सूची में नाम जोड़ने, 1983 में भारतीय नागरिकता मिलने का आरोप। दैनिक जागरण ने दिया है, वायुसेना के परिवहन बेड़े में शामिल होंगे 60 नए विमान, बढ़ेगी ताकत, 60 लाख करोड़ रुपए से खरीदे जाएंगे सोवियत युग के एंटोनोव N-32 विमानों का लेंगे स्थान। लोक सत्य ने सौगात शीर्षक से दिया है, 20 अक्टूबर से न्यूजीलैंड में टैक्स फ्री बिकेगा सामान। न्यूजीलैंड ने भारत में अगले 15 वर्ष में $20 अरब निवेश की जताई प्रतिबद्धता। पंजाब केसरी की सुर्खी है, रूस संसदीय चुनाव में पुतिन की पार्टी का दबदबा, 450 में से 355 सीटें जीती। क्रीमिया समेत यूक्रेन से कब्जाए 4 क्षेत्रों में भी वोटिंग। अमर उजाला ने पहल शीर्षक से लिखा है, छत पर मुफ्त सोलर पैनल, 1,56,000 तक की सब्सिडी। सीएम ने दिल्ली पीएम सूर्य घर पोर्टल शुरू किया, 400 यूनिट तक मासिक खपत वालों को लाभ, 2,30,000 परिवारों को मुफ्त सोलर पैनल देने का लक्ष्य, सोसाइटी और छोटे घर दायरे में। वहीं जनसत्ता ने एशियाई खेल पर सुर्खी दी है, हिमांशु रुद्रांश ने निशानेबाजी में बिखेरी चमक, भारत ने जीते 4 पदक, कुल पदकों की संख्या 6 हुई। नवभारत टाइम्स के अनुसार सुचिका ने मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में कांस्य पदक जीतकर रचा इतिहास। हिंदुस्तान की सुर्खी है, नगा फिल्म अंग ऑस्कर की दौड़ में शामिल।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में मादक पदार्थ रोधी कार्यबल प्रमुखों के 3रे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अवसर पर फ्रांस, इक्वाडोर, स्लोवाकिया और स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। ब्रिटेन ने ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के हमलों का मुकाबला करने के लिए सऊदी अरब को सीमित सैन्य सहायता देने पर सहमति जताई। और जापान एशियाई खेलों में महिला क्रिकेट के स्वर्ण पदक मुकाबले में आज भारत और श्रीलंका आमने सामने। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
0: और अब तक हम सुन रहे थे ऑल इंडिया रेडियो के सहयोग से प्रस्तुत होने वाले न्यूज। आप सुनते रहे वेणुधुनी 90.4 FM के एलई कनसु।
12: ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನವ ಹಾಗೂ ಯುವ ಉದ್ಯಮಿಗಳು, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗಳು, ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗ ಆರಂಭಿಸುವವರಿಗೆ ಇದೊಂದು ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ. ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಆದಾಯವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ, ಕನಸಿನ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಸುಭದ್ರ ಬುನಾದಿ ಹಾಕುವ, ಉದ್ಯಮ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುವ ಒಂದು ದಿನದ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ರವಿವಾರ ದಿನಾಂಕ 18 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2026 ಎಂಪವರ್ 365 ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಕಂಪನಿಯವರೆಗೆ ಲಾಭದಾಯಕ ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳಾಗಲು ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಹಿಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ನೋಂದಾಯಿಸಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 9513519666 ಗಿಕೋನಾ ಸಕ್ಸಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ.

0: नमस्कार, आप सुन रहे वेणु धोनी 90.4 FM KLE कनसु। आज के इस विशेष प्रोग्राम में मनीषा आपका स्वागत करती है। आज हम सुनने जा रहे चिया सीड्स, जिसको हम सुपर फूड कहते हैं, उसके बारे में हम जान लेंगे कि कहाँ पे ये उगता है, क्या उसका मार्केटिंग है और कहाँ पे हम इसको बेच सकते हैं, इसके बारे में आज के एपिसोड में हम जानेंगे। और ये बातचीत करने के लिए मेरे साथ मेरे स्टूडियो में है हितेश परीख जी, जो अंबाजी गुजरात से है, पर्ल ट्रेडिंग कारपोरेशन के मेंबर है। पर्ल ट्रेडिंग कारपोरेशन और केली कृषि विज्ञान केंद्र के साथ इनका MOU हुआ है, इसी के चलते आज का एपिसोड हम सुनने जा रहे हैं। हितेश जी, वेणुधुनी के स्टूडियो में आपका स्वागत है।
1: थैंक यू।
0: आज हम चिया सीड्स के बारे में बात करेंगे। हालांकि आजकल के दौर में चिया सीड्स बहुत ही पॉपुलर हुआ है, उसको सुपर फूड नाम से जाना जाता है, तो थोड़ा सा चिया सीड्स के बारे में हम बात करेंगे और आगे और मार्केटिंग के बारे में भी जान लेंगे। तो क्या बताएंगे आप चिया सीड्स के बारे में?
1: मैडम, एक्चुअल में चिया सीड्स इंडियन क्रॉप नहीं है। ये पेरुग्वे और मेक्सिको से कुछ साल पहले मैसूर में एक NGO ने सीड्स लाके वहाँ पे फार्मिंग स्टार्ट किया था।
0: अच्छा।
1: और इसके बाद में वहाँ पे अच्छी तरह से मैसूर में आसपास पूरे बेल्ट में वो फार्मिंग होता है।
0: ओके।
1: और इसके बाद में नीमच है MP, वो बेल्ट में भी बहुत होता है, गुजरात में कुछ कुछ जगह होता है और महाराष्ट्र में वासिम के आसपास खूब होता है चिया सीड्स।
0: अच्छा।
1: और ये हम यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं। हमारा पूरा टारगेट है यहाँ जो भी फार्मर्स है उनको हम सीड्स प्रोवाइड करेंगे और उनके साथ हम MOU करेंगे, एग्रीमेंट करेंगे।
0: अच्छा।
1: बायबैक गारंटी करेंगे हम।
0: ओके।
1: और उसमें हम उनको एक मिनिमम रेट हम एग्रीमेंट में डालेंगे और इसके ऊपर अगर मार्केट रेट, जब उनका क्रॉप आता है तो मार्केट रेट अगर ऊपर है तो उसमें उनको ये भी ऑप्शन दिया है, तो आपको मार्केट रेट के हिसाब से कुछ परसेंटेज जो हम म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग से जो भी नक्की करेंगे वो हम उसमें डिडक्ट करके उनका मटेरियल हम ऑन द स्पॉट परचेज करेंगे। और हमारी एक्चुअल में रिक्वायरमेंट है एनुअली 8 से 10 हजार टन की। और हमारा गुजरात में प्लांट है जिसमें हम उसको प्रोसेस करते हैं, सॉर्टिंग करते हैं उसमें से, और सब करके हमारा एक्सपोर्ट होता है गुजरात से।
0: अच्छा।
1: और ये ज़्यादातर चलता है यूरोपियन कंट्रीज, फिर अमेरिका और गल्फ कंट्रीज, ये सब में बहुत बड़ी डिमांड है और हमारा टोटल सप्लाई उसमें है। और हम यहाँ से ये मार्केट जैसे मैसूर में है उस तरह का मार्केट हम यहाँ पे डेवलप करना चाहते हैं बेलगाम में।
0: अच्छा।
1: क्योंकि यहाँ फार्मर्स को इतना अवेयरनेस नहीं है चिया सीड्स का।
0: करेक्ट सर।
1: हाँ। तो इसके लिए हमारे साथ KVK भी टाई अप है और हिरेमत सर भी काफ़ी सेमिनार करते हैं गांव-गांव जाके और फार्मर्स लोगों को पूरा एजुकेट करते हैं, डेमोंस्ट्रेशन करते हैं और समझाते हैं उनको।
0: तो अगर चिया सीड्स हम ग्रो करते हैं, यहाँ के फार्मर्स अगर ग्रो करते हैं तो क्या बेनिफिट्स मिलेंगे उनको? और
1: एक्चुअल में चिया सीड का जो क्रॉप आता है वो उसकी रेट के हिसाब से वो जो अदर आइटम जो करते हैं इससे उनको फर्स्ट थिंग के उनको मार्जिन ज़्यादा मिलता है।
0: अच्छा।
1: इसमें और इसके अंदर पानी ज़्यादा नहीं चाहिए, इसके अंदर जीवात कोई लगती नहीं है, ये चिया सीड में कभी कोई जीवात, उसमें केमिकल छिड़कना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है।
0: अच्छा।
1: और इसको कोई जानवर भी नहीं खाता है, मीन्स वो सारी चीज़ें हैं कि मीन्स, और ये इसकी डिमांड खूब है अभी जो है इससे और बढ़ रही है और इंडिया में भी इतनी अवेयरनेस नहीं है जो अब धीरे धीरे करके बढ़ रही है।
0: करेक्ट सर। तो यहाँ के क्लाइमेट को आ जाता है?
1: हाँ, ये वेदर में बढ़िया होता है। बेलगाम है, मैसूर है, ये इवन ये उसका वेदर का कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं पड़ता, MP में भी होता है। MP में मेरा प्लांट है मनावर में, धार डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ पे भी मेरा प्लांट में ये थोड़ा बहुत खेती का जमीन है, हमने वहाँ पे उसको अप्लाई किया, बहुत बढ़िया क्रॉप आया उसमें।
0: ओके। कितने दिनों में आता है
1: ये? 90 डेज का साइकिल है।
0: ओके। यानी 90 डेज में क्रॉप आ जाएगा और फिर आगे का प्रोसीजर होगा।
1: हाँ।
0: तो क्या रहता है अगर कोई फार्मर से यहाँ पे ग्रो करते हैं तो आगे का प्रोसीजर आपकी कंपनी की तरफ से कैसे रहता है?
1: हम तो फार्मर्स हार्वेस्टिंग करके हमें मटेरियल देते हैं, वो सब फार्मर्स को हम समझाते हैं कैसे क्लीन करना है, वो क्लीन करके हमें देते हैं और हम उसका जो भी है मटेरियल चेक करके ऑन द स्पॉट हम पेमेंट करते हैं वेट के हिसाब से।
0: ओके।
1: और हम तुरंत उसी टाइम हम बायबैक कर लेते हैं। उसमें कोई हम डिले नहीं करते, सेम डे आज फार्मर लाया, एक क्विंटल लाया, पांच क्विंटल लाया के दो टन लाया, ऑन द स्पॉट हम लोग बाय कर लेते हैं।
0: तो आपकी तरफ से आपकी टीम कोई यहाँ पे आके चेक कर दी या फिर ये कौन करता है?
1: मेरे साथ केवीके जुड़ा हुआ है और केवीके के ये मिस्टर हिरेमत सर है और उनकी टीम है, वो फार्मर्स को गाइड करती है, उनको टेक्निकल गाइडलाइन भी देती है सब कुछ, उनको कोई प्रॉब्लम होती है तो खुद जाके भी उनको गाइड करते हैं।
0: अच्छा, यानी कि केवीके की तरफ से काफी अवेयरनेस फैला रहे हैं।
1: काफी अवेयरनेस।
0: जब सीड्स आप देते हैं आपकी कंपनी की तरफ से तभी एग्रीमेंट होता है या फिर जब आप परचेज करने आते तब होता
1: सीड्स
0: है?
1: देने के टाइम,
0: सीड्स देने के टाइम। क्या रहता है उसमें एग्रीमेंट में, मतलब क्या क्या रहता है?
1: एग्रीमेंट में तो यही है कि सीड्स हम देते हैं और उसके सामने फार्मर्स को हमें मटेरियल हमें बैक देना है, वो किसी और को नहीं दे सकते, उनको हमें ही बेचना है। अच्छा। और हमने कोई ऐसा उनको बाइंडिंग नहीं रखा है रेट का, उनको दो चॉइस दी है कि ये मिनिमम रेट है, अगर आप इसमें एग्रीमेंट करना चाहो तो भी वी आर रेडी, और आपको अगर मार्केट रेट पे जाना है, क्योंकि मार्केट उसका फिक्स नहीं होता है,
0: करेक्ट
1: 180, 200, 250 भी जाता है और 120 रुपया भी होता है, तो वो अभी से रेट फिक्स नहीं कर सकते, तो उनको यही है कि अगर मार्केट रेट से जाना है आप लोगों को तो उस टाइम जो भी मार्केट रेट होगी उसमें हम 10% लेस करके और मटेरियल चेक करके आपका मटेरियल ऑन द स्पॉट हम बायबैक कर लेंगे।
0: यानी कि काफी फायदा है फार्मर्स को इसमें,
1: काफी फायदा, उनको कहीं बेचने जाने की जरूरत नहीं है, मार्केट ढूंढने की जरूरत नहीं है,
0: करेक्ट,
1: चाहे वो कितना भी मटेरियल ग्रो करे, 1,000 टन लावे 2,000 टन लावे तो उतना डिमांड है हमारे पास, उतना मार्केट है।
0: आपकी कंपनी की तरफ से ऐसे कुछ है कि इतनी क्वांटिटी में ही हमें देना है करके ऐसे?
1: हाँ, इसमें एक चीज है कि जो भी जहाँ से मटेरियल लोड होना है तो वहाँ एटलीस्ट मेरे को 25 टन के आसपास का लोड चाहिए।
0: अच्छा।
1: क्योंकि यहाँ से जो भी ट्रांसपोर्टेशन होगा, यहाँ से जो भी गाड़ियाँ जाएगी वो गुजरात जाएगी, सिद्धपुर हमारा प्लांट है वहाँ पे जाएगी, तो मिनिमम मटेरियल चाहिए। अब फार्मर 100 किलो 500 किलो या 1 टन 2 टन लाए तो वो यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन करना मुश्किल है,
0: करेक्ट सर।
1: और अगर हम लोकल ट्रांसपोर्ट में भेजते हैं तो किराया ऑलमोस्ट 3 गुना 4 गुना हो जाता है, फ्रेट चार्जेस ऑलमोस्ट इतना हो जाता है।
0: तो मान लीजिए कि कोई फार्मर अगर कम क्वांटिटी में ग्रो किया है उसने और आपको जितना क्वांटिटी चाहिए वो जमा होने के लिए कुछ समय बीतता है, तो स्टोरेज कैसे, मतलब वो खराब होता है माल या क्या होता है उसका?
1: ये मटेरियल को कुछ नहीं होता है, इसमें जीवात भी नहीं लगती है, ये फाइनल मटेरियल की बात कर रहा हूँ, आप उसको खुले में रखो, 1 साल रखो, 2 साल रखो, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है।
0: अच्छा।
1: मॉइस्चर खाली इतना ध्यान रखना है कि मॉइस्चर नहीं लगना चाहिए,
0: ओके,
1: बस बाकी उसको कुछ भी नहीं, कोई जीवात नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। आप 2 साल रखो 3 साल रखो कोई उसमें कोई इफेक्ट आती नहीं है।
0: करेक्ट, क्योंकि वो भी जान लेना बहुत जरूरी है।
1: ये मैसूर में जो फार्मर्स है वहाँ के फार्मर्स कैपेसिटी वाले ज्यादातर, तो वो लोग होल्ड करते हैं, एक एक साल तक मैंने देखा है होल्ड करते, और छोटी क्वांटिटी 200 टन 500 टन ऐसा स्टॉक उनके पास रहता है।
0: अच्छा, यानी कि ये जो चिया सीड्स है जिसको हम सुपर फूड नाम से जानते हैं और काफी सारे लोग अभी चिया सीड्स का यूज कर रहे हैं, यहाँ पे भी डेली रूटीन में भी इसका यूज बहुत होता है, तो ये अगर यहाँ पे ग्रो हो जाए और इसको इतना अच्छा मार्केट अगर मिल जाए तो हमारे फार्मर्स के लिए बहुत ही अच्छी बात होगी।
1: जी जी जी 100%। और जितना ग्रो बढ़ेगा इवन ऑल ओवर इंडिया में तो उतना उसका रेट भी धीरे धीरे डाउन जाएगा। सबसे बड़ा उसका फार्मिंग होता है पेरुग्वे और मेक्सिको में,
0: ओके,
1: अगर यहाँ पे वो लेवल तक अगर फार्मिंग होना स्टार्ट हो जावे तो ये पूरे वर्ल्ड में ये डोमिनेट कर सकता है।
0: एग्जैक्टली जी, काफी अच्छी जानकारी आपने दे दी और ये जो चिया सीड्स है उसके बारे में फार्मर्स के लिए, जो कि मार्केटिंग की बहुत चिंता रहती है फार्मर्स को, तो वो भी प्रॉब्लम आपने ऑलमोस्ट सॉल्व कर दिया है, तो इसके बारे में आपने बात की और हमारे फार्मर्स के लिए ये अवेयरनेस दिया, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी।
1: शुक्रिया,
0: थैंक यू सो मच।
1: थैंक यू।
0: ये था आज का विशेष प्रोग्राम जो आप केली वेणुधोनी 90.4 एफएम पे सुन रहे थे। हितेश परीख जी हमारे साथ थे, जो कि प्रॉपर अंबाजी गुजरात से हैं, पर्ल ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन के मेंबर हैं और केली कृषि विज्ञान केंद्र के साथ इनका ये एमओयू हुआ है। तो इसके चलते आज का ये एपिसोड था, कैसा था जरूर बताएगा। नंबर है 9019904904। ये है केली वेणुधोनी 90.4 एफएम की प्रस्तुति। नमस्कार।

माँ बनने में हो रही है देर, इंतजार है खुशखबरी का। देयर इज वन नेम यू कैन ट्रस्ट, केली फर्टिलिटी सेंटर विद साइंस, सोल एंड सेंसिटिविटी। जिंदगी को दो नई शुरुआत केली IVF के साथ। आज ही विजिट करें केली फर्टिलिटी सेंटर, OPD नंबर 97, शरावती सेकेंड फ्लोर, केलीज डॉक्टर प्रभाकर कोरे हॉस्पिटल एंड MRC बेगावी। फोन नंबर 08312551530 एंड 247377, एक्सटेंशन 1530।

Namaste. On today's occasion, I have prepared a dal vadi, which I have named as a shraddha rasa amruta dal vadi because it is made of complete shraddha rasa yukta rasas. All the ingredients are six rasas like madhu, tikta, amlu, amla, tikta, kashaya. Actually, this meal, which is famous in Gujarat and Rajasthan, but on today's occasion, I have prepared change into the like in Ayurveda form. So I have named as a shraddha rasa amruta dal vadi and love the food. विथ तकरा सारे इंग्रेडिएंट्स है उसमें इसमें दाल में मूंग दाल मसूर दाल गया है उसमें ड्रमस्टिक और कोशातकी रिज गार्ड उसको बॉईल किया है विथ फेनुग्रीक डाल के उसको बॉईल करने के बाद उसको मैश किया है सारे को उसके बाद बड़ी बनाइए बड़ी विच इज़ मेड फ्रॉम द रागी सत्तू एंड गेहूं का आटा विद द हेल्प ऑफ फेनुग्रीक लीव्स एंड जिंजर गार्लिक पेस्ट बड़ी को इसमें डीप किया है उसको उबाला है एंड देन लास्ट में विद द हेल्प ऑफ द ग्रीत उसको संस्कारित एक्चुअली कंप्लीट मील है अगर कुछ अलग अलग नहीं बनाना है आपको कंप्लीट मील एट अ टाइम चाहिए तो आप एक शर्ट मील खा सकते विद प्रॉपर कार्ब्स है उसमें प्रोटीन्स है फैट्स है प्रॉपर न्यूट्रिशन सारे इंग्रीडियंट्स फाइबर्स है उसमें आयरन भी है फॉलेट सारे इंग्रीडियंट्स

myself Dr. Deepshikha Sharma. I belong to Jammu Kashmir, PG first year RSBK from KLE Ayurveda College, Belgavi. मेरी प्लेटिंग जो है वो है सात्विक नरिश बॉल. इसमें हमने 7 जो है मील जो है वो प्रिपेयर करी हैं. इसमें सबसे पहले रिफ्रेशिंग ड्रिंक है. रिफ्रेशिंग ड्रिंक में गोवा और मिंट का फ्लेवर है विद जीरा भून के डाला है. और इसके बाद ये है रागी और बीटरूट का बॉल है. एज अ रोटी यूज़ कर सकते हैं इसको. उसके बाद इसके साथ तिक्त रस है. ये षड रस युक्त आहार बनाया है. ये कषाय रस है. देन तिक्त रस के लिए करेला फ्राइड बनाए हैं. उसके बाद ये पनीर का अल्टरनेटिव ले सकते हैं आप, जैसे लैक्टोज इंटॉलरेंस रहता है या फिर पनीर जो है कई बाहर का पनीर पसंद नहीं आता, तो ये पनीर का अल्टरनेटिव ले सकते हैं. लौकी और बेसन का कटलेट्स बनाए हैं. देन ये पम्पकिन मेथी भाजी है. मेथी दाना यूज़ किया गया है. लाइक डायबिटिक या फिर डिजीज पर्सन भी इसको खा सकते हैं डेली बेसिस पे. ये स्पेशल फेमस है जम्मू कश्मीर में ये बनता है. ये षष्ठीशाली राइस है. रेड राइस जो है वो कुक किए गए हैं इन बटर मिल्क में, कांजी में कुक किए गए हैं. और इस डिश का नाम है मेहरी, मेहरी फ्रॉम जम्मू कश्मीर. देन ये है मेथी दाल के साथ इसका मूंग दाल का वड़ा. इसमें ब्लेंड करके इसको मूंग दाल को इसमें थोड़ी सी गाजर और बाकी टेस्ट के लिए सांधव लवन ऐड किया गया है. और देन कम्स फ्रॉम अर स्वीट. स्वीट डिश के लिए लौकी का हलवा बनाया गया जिसमें थोड़ी सी गाजर, ड्राई फ्रूट्स और तिल डाले गए हैं. सारी जो डिशेज है वो सारी हर्बल प्रिपेयर हैं. इसमें कुछ भी प्याज या लहसुन का प्रयोग नहीं

0: Hello everyone, this is me Vaishnavi.
1: This is I am Atharva.
0: We both are from Dr. Ayurvedic Medical College and Hospital Research Center, Hunga, Belgavi. So today we are serving pathya on the plate. So today we have Niger seed laddus. These are made out of jaggery, dates and Niger seeds. And we have a new recipe here that is moong dal made puris and the chutneys, as this follows the pathya, and amlaki panaka, which is made out of amlaki and jaggery, and it is good for the pediatrics, and this is good for the adults and the growing age, as gives the, it is rich in magnesium.
1: Amlaki panaka has very much Ayurvedic preference. It is used in the pediatric patients, balya. It gives the varna, medha, buddhi to the patient, and it is daily use preparation. We can drink it and take it daily, and it is very simple. We just need 5 minutes to make it.
0: Thank you.
2: Thank you, ma'am.
3: Gwen, this is Purti.
4: This is Mrudula.
3: We are from SBG Ayurveda Medical College and Hospital. Today we are presenting dates and nuts bites, which are made up of dates, kaju, badam, pista and ghee. Here we have not used any sugar nor any jaggery. It is purely sweet based upon the dates only, and it is very quick and very useful for the weak patients and who has lean body and all, and who wants strength in them. We can give them weekly or monthly. We can store them in the refrigerator, and it is very useful as the Ayurvedic advantage and how we naturally want the food to be. It is all present in this. We can it helps for nourishing the body. Thank you.
5: My name is Sania Patel.
6: I am Ananya.
5: We are from SBG Ayurvedic Medical College. हमने सोया टिक्की बनाई है. मेन इन्ग्रीडियंट इसका सोयाबीन है, जो रिच इन प्रोटीन है. तो हम बहुत सारे एज अल्टरनेट भी यूज़ कर सकते हैं इसको, क्योंकि रिच इन प्रोटीन है. तो हम बाकी के जो जंक फूड्स अवॉइड करके इसको एज अ स्नैक्स भी हम यूज़ कर सकते हैं. इसमें हमने सिर्फ सोयाबीन नहीं बल्कि कैप्सिकम, कैरेट वगैरह भी ऐड किया है इसका डो बनाने के लिए. फिर हमने इसको डीप फ्राई नहीं किया है, हमने इसको शैलो फ्राई किया है टू सो इट बिकम्स मोर हेल्दियर. और हमने इसको सर्व किया है मिंट और मिंट चटनी के साथ, जो इसके टेस्ट को बैलेंस करता है. इसका जो वीर्य है ये उष्ण वीर्य है, और उसका पुदीने का जो वीर्य है वो होता है शीत वीर्य. तो ये दोनों को बैलेंस करता है बॉडी में बहुत अच्छे से. को हम साथ में लेंगे तो इट्स बिकम अ बैलेंस्ड डाइट.
7: सो आई एम भवानी एंड माई को पार्टिसिपेंट सुष्मिता. वी आर फ्रॉम SBG आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज. सो टुडे बेसिकली द थीम गिवन फॉर अस वॉज क्विक बाइट्स. सो वॉट एवर कैन बी प्रिपेयर इन दिस बिजी शेड्यूल क्विकली, सो वी हैव चूजन ड्राई फ्रूट्स बाइट्स. सो द बेसिकली इंग्रीडियंट्स वी हैव यूज इज ग्राउंडनट, जैगरी, बादाम, कैश्यू, देन ससेमे एंड इला, दैट वॉट वी कॉल एज कार्डमम, एंड नेक्स्ट वी हैव यूज घी. सो द रेसिपीज गोज लाइक, फर्स्ट वील रोस्ट द ग्राउंडनट वॉट एवर द and we'll peel out the red stuff, whatever it is present on the groundnut, and after we'll make it a powder, then we'll add jaggery to it, and to balance we'll add ghee to it, so that we can prepare the chickies like this. And we have roasted those whatever the dry fruits we add in ghee, so that it becomes good. वैसे chew करने के लिए नहीं आता. So after that we have prepared, we have mixed everything, and we for the flavor purpose we have added cardamom in that powder.

0: नमस्कार, आप सुन रहे वेणु धोनी 90.4 एफएम के एलई कनसु। आज के इस विशेष प्रोग्राम में मनीषा आपका स्वागत करती है। आज हम सुनने जा रहे चिया सीड्स, जिसको हम सुपर फूड कहते हैं, उसके बारे में हम जान लेंगे कि कहाँ पे ये उगता है, क्या उसका मार्केटिंग है और कहाँ पे हम इसको बेच सकते हैं, इसके बारे में आज के एपिसोड में हम जानेंगे। और ये बातचीत करने के लिए मेरे साथ मेरे स्टूडियो में है हितेश परीख जी, जो अंबाजी गुजरात से है, पर्ल ट्रेडिंग कारपोरेशन के मेंबर है। पर्ल ट्रेडिंग कारपोरेशन और केली कृषि विज्ञान केंद्र के साथ इनका एमओयू हुआ है, इसी के चलते आज का एपिसोड हम सुनने जा रहे हैं। हितेश जी, वेणुधुनी के स्टूडियो में आपका स्वागत है।
1: थैंक यू।
0: आज हम चिया सीड्स के बारे में बात करेंगे। हालांकि आजकल के दौर में चिया सीड्स बहुत ही पॉपुलर हुआ है, उसको सुपर फूड नाम से जाना जाता है, तो थोड़ा सा चिया सीड्स के बारे में हम बात करेंगे और आगे और मार्केटिंग के बारे में भी जान लेंगे। तो क्या बताएंगे आप चिया सीड्स के बारे में?
1: मैडम, एक्चुअल में चिया सीड्स इंडियन क्रॉप नहीं है। ये पेरुग्वे और मेक्सिको से कुछ साल पहले मैसूर में एक एनजीओ ने सीड्स लाके वहाँ पे फार्मिंग स्टार्ट किया था।
0: अच्छा।
1: और इसके बाद में वहाँ पे अच्छी तरह से मैसूर में आसपास पूरे बेल्ट में वो फार्मिंग होता है।
0: ओके।
1: और इसके बाद में नीमच है एमपी, वो बेल्ट में भी बहुत होता है, गुजरात में कुछ कुछ जगह होता है और महाराष्ट्र में वासिम के आसपास खूब होता है चिया सीड्स।
0: अच्छा।
1: और ये हम यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं। हमारा पूरा टारगेट है यहाँ जो भी फार्मर्स है उनको हम सीड्स प्रोवाइड करेंगे और उनके साथ हम एमओयू करेंगे, एग्रीमेंट करेंगे।
0: अच्छा।
1: बायबैक गारंटी करेंगे हम।
0: ओके।
1: और उसमें हम उनको एक मिनिमम रेट हम एग्रीमेंट में डालेंगे और इसके ऊपर अगर मार्केट रेट, जब उनका क्रॉप आता है तो मार्केट रेट अगर ऊपर है तो उसमें उनको ये भी ऑप्शन दिया है, तो आपको मार्केट रेट के हिसाब से कुछ परसेंटेज जो हम म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग से जो भी नक्की करेंगे वो हम उसमें डिडक्ट करके उनका मटेरियल हम ऑन द स्पॉट परचेज करेंगे। और हमारी एक्चुअल में रिक्वायरमेंट है एनुअली 8 से 10 हजार टन की। और हमारा गुजरात में प्लांट है जिसमें हम उसको प्रोसेस करते हैं, सॉर्टिंग करते हैं उसमें से, और सब करके हमारा एक्सपोर्ट होता है गुजरात से।
0: अच्छा।
1: और ये ज़्यादातर चलता है यूरोपियन कंट्रीज, फिर अमरीका और गल्फ कंट्रीज, ये सब में बहुत बड़ी डिमांड है और हमारा टोटल सप्लाई उसमें है। और हम यहाँ से ये मार्केट जैसे मैसूर में है उस तरह का मार्केट हम यहाँ पे डेवलप करना चाहते हैं बेलगाम में।
0: अच्छा।
1: क्योंकि यहाँ फार्मर्स को इतना अवेयरनेस नहीं है चिया सीड्स का।
0: करेक्ट सर।
1: हाँ। तो इसके लिए हमारे साथ केवीके भी टाई अप है और हिरेमत सर भी काफ़ी सेमिनार करते हैं गांव-गांव जाके और फार्मर्स लोगों को पूरा एजुकेट करते हैं, डेमोंस्ट्रेशन करते हैं और समझाते हैं उनको।
0: तो अगर चिया सीड्स हम ग्रो करते हैं, यहाँ के फार्मर्स अगर ग्रो करते हैं तो क्या बेनिफिट्स मिलेंगे उनको? और
1: एक्चुअल में चिया सीड का जो क्रॉप आता है वो उसकी रेट के हिसाब से वो जो अदर आइटम जो करते हैं इससे उनको फर्स्ट थिंग के उनको मार्जिन ज़्यादा मिलता है।
0: अच्छा।
1: इसमें और इसके अंदर पानी ज़्यादा नहीं चाहिए, इसके अंदर जीवात कोई लगती नहीं है, ये चिया सीड में कभी कोई जीवात उसमें केमिकल छिड़कना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है।
0: अच्छा।
1: और इसको कोई जानवर भी नहीं खाता है, मीन्स वो सारी चीज़ें है कि मीन्स, और ये इसकी डिमांड खूब है अभी जो है इससे और बढ़ रही है और इंडिया में भी इतनी अवेयरनेस नहीं है जो अब धीरे धीरे करके बढ़ रही है।
0: करेक्ट सर। तो यहाँ के क्लाइमेट को आ जाता है?
1: हाँ, ये वेदर में बढ़िया होता है। बेलगाम है, मैसूर है, ये इवन ये उसका वेदर का कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं पड़ता, एमपी में भी होता है। एमपी में मेरा प्लांट है मनावर में, धार डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ पे भी मेरा प्लांट में ये थोड़ा बहुत खेती का जमीन है, हमने वहाँ पे उसको अप्लाई किया, बहुत बढ़िया क्रॉप आया उसमें।
0: ओके। कितने दिनों में आता है
1: ये? 90 डेज का साइकिल है।
0: ओके। 90 डेज में क्रॉप आ जाएगा और फिर आगे का प्रोसीजर होगा।
1: हाँ।
0: तो क्या रहता है अगर कोई फार्मर से यहाँ पे ग्रो करते हैं तो आगे का प्रोसीजर आपकी कंपनी की तरफ से कैसे रहता है?
1: हम तो फार्मर्स हार्वेस्टिंग करके हमें मटेरियल देते हैं, वो सब फार्मर्स को हम समझाते हैं कैसे क्लीन करना है।

0: करके हमें देते हैं और हम उसका जो भी है मटेरियल चेक करके ऑन द स्पॉट हम पेमेंट करते हैं वेट के हिसाब से और हम तुरंत उसी टाइम हम बायबैक कर लेते हैं, उसमें कोई हम डिले नहीं करते हैं। सेम डे आज फार्मर लाया, एक क्विंटल लाया, पांच क्विंटल लाया के दो टन लाया, ऑन द स्पॉट हम लोग बाय कर लेते हैं।
1: तो आपकी तरफ से आपकी टीम कोई यहाँ पे आके चेक करती है या फिर ये कौन करता है?
0: मेरे साथ केवीके जुड़ा हुआ है और केवीके के ये मिस्टर हिरेमत सर है और उनकी टीम है, वो फार्मर्स को गाइड करती है, उनको टेक्निकल गाइडलाइन भी देती है सब कुछ, उनको कोई प्रॉब्लम होती है तो खुद जाके भी उनको गाइड करते हैं।
1: अच्छा, यानी कि केवीके की तरफ से काफी अवेयरनेस फैला रहे हैं।
0: काफी अवेयरनेस।
1: जब सीड्स आप देते हैं आपकी कंपनी की तरफ से तभी एग्रीमेंट होता है या फिर जब आप परचेज करने आते तब होता है?
0: सीड्स देने के टाइम।
1: सीड्स देने के टाइम। क्या रहता है उसमें एग्रीमेंट में, मतलब क्या क्या रहता है?
0: एग्रीमेंट में तो यही है कि सीड्स हम देते हैं और उसके सामने फार्मर्स को हमें मटेरियल हमें बैक देना है, वो किसी और को नहीं दे सकते, उनको हमें ही बेचना है। अच्छा। और हमने कोई ऐसा उनको बाइंडिंग नहीं रखा है रेट का, उनको दो चॉइस दी है कि भी ये मिनिमम रेट है, अगर आप इसमें एग्रीमेंट करना चाहो तो भी वी आर रेडी, और आपको अगर मार्केट रेट पे जाना है, क्योंकि मार्केट उसका फिक्स नहीं होता है,
1: करेक्ट
0: 180 200 250 भी जाता है और 120 रुपया भी होता है, तो वो अभी से रेट फिक्स नहीं कर सकते, तो उनको यही है कि अगर मार्केट रेट से जाना है आप लोगों को तो उस टाइम जो भी मार्केट रेट होगी उसमें हम 10% लेस करके और मटेरियल चेक करके आपका मटेरियल ऑन द स्पॉट हम बाय बैक कर लेंगे।
1: यानी कि काफी फायदा है फार्मर्स को इसमें,
0: काफी फायदा, उनको कहीं बेचने जाने की जरूरत नहीं है, मार्केट ढूंढने की जरूरत नहीं है,
1: करेक्ट,
0: चाहे वो कितना भी मटेरियल ग्रो करे, 1000 टन लावे 2000 टन लावे तो उतना डिमांड है हमारे पास, उतना मार्केट है।
1: आपकी कंपनी की तरफ से ऐसे कुछ है कि इतनी क्वांटिटी में ही हमें देना है करके ऐसे?
0: हाँ, इसमें एक चीज है कि जो भी जहाँ से मटेरियल लोड होना है तो वहाँ एटलीस्ट मेरे को 25 टन के आसपास का लोड चाहिए।
1: अच्छा।
0: क्योंकि यहाँ से जो भी ट्रांसपोर्टेशन होगा, यहाँ से जो भी गाड़ियाँ जाएगी वो गुजरात जाएगी, सितपुर हमारा प्लांट है वहाँ पे जाएगी, तो मिनिमम मटेरियल चाहिए। अब फार्मर 100 किलो 500 किलो या 1 टन 2 टन लाए तो यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन करना मुश्किल है,
1: करेक्ट सर।
0: और अगर हम लोकल ट्रांसपोर्ट में भेजते हैं तो किराया ऑलमोस्ट 3-4 गुना हो जाता है, फ्रेट चार्जेस ऑलमोस्ट इतना हो जाता है।
1: तो मान लीजिए कि कोई फार्मर अगर कम क्वांटिटी में ग्रो किया है उसने, और आपको जितना क्वांटिटी चाहिए वो जमा होने के लिए कुछ समय बीतता है, तो स्टोरेज कैसे, मतलब वो खराब होता है माल या क्या होता है उसका?
0: ये मटेरियल को कुछ नहीं होता है, इसमें जीवात भी नहीं लगती है, ये फाइनल मटेरियल की बात कर रहा हूँ। आप उसको खुले में रखो, 1 साल रखो, 2 साल रखो, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है।
1: अच्छा।
0: मॉइस्चर खाली इतना ध्यान रखना है कि मॉइस्चर नहीं लगना चाहिए,
1: ओके,
0: बस बाकी उसको कुछ भी नहीं, कोई जीवात नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। आप 2 साल रखो, 3 साल रखो, कोई उसमें कोई इफेक्ट आती नहीं है।
1: करेक्ट, क्योंकि वो भी जान लेना बहुत जरूरी
0: नहीं,
1: है
0: नहीं,
1: कि
0: नहीं, ये मैसूर में जो फार्मर्स है वहाँ के फार्मर्स कैपेसिटी वाले ज्यादातर, तो वो लोग होल्ड करते हैं, 1-1 साल तक मैंने देखा है होल्ड करते हैं, और छोटी क्वांटिटी 200 टन 500 टन ऐसा स्टॉक उनके पास रहता है।
1: अच्छा, यानी कि ये जो चिया सीड्स है जिसको हम सुपर फूड नाम से जानते हैं और काफी सारे लोग अभी चिया सीड्स का यूज कर रहे हैं, यहाँ पे भी डेली रूटीन में भी इसका यूज बहुत होता है, तो ये अगर यहाँ पे ग्रो हो जाए और इसको इतना अच्छा मार्केट अगर मिल जाए तो हमारे फार्मर्स के लिए बहुत ही अच्छी बात होगी।
0: जी जी जी 100%। और जितना ग्रो बढ़ेगा इवन ऑल ओवर इंडिया में तो उतना उसका रेट भी धीरे धीरे डाउन जाएगा। सबसे बड़ा उसका फार्मिंग होता है पेरुग्वे और मेक्सिको में,
1: ओके,
0: अगर यहाँ पे वो लेवल तक अगर फार्मिंग होना स्टार्ट हो जावे तो ये पूरे वर्ल्ड में ये डोमिनेट कर सकता है।
1: एग्जैक्टली। तेज जी, काफी अच्छी जानकारी आपने दे दी और ये जो चिया सीड्स है उसके बारे में फार्मर्स के लिए, जो कि मार्केटिंग की बहुत चिंता रहती है फार्मर्स को, तो वो भी प्रॉब्लम आपने ऑलमोस्ट सॉल्व कर दिया है, तो इसके बारे में आपने बात की और हमारे फार्मर्स के लिए ये अवेयरनेस दिया, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी।
0: शुक्रिया।
1: थैंक यू सो मच।

0: guys. Thank you.
1: ये था आज का विशेष प्रोग्राम जो आप के लिए वेणु धोनी 90.4 FM पे सुन रहे थे। हितेश परीख जी हमारे साथ थे, जो कि प्रॉपर अंबाजी गुजरात से हैं, पर्ल ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन के मेंबर हैं और केली कृषि विज्ञान केंद्र के साथ इनका ये MOU हुआ है। तो इसके चलते आज का ये एपिसोड था, कैसा था जरूर बताएगा। नंबर है 9019904904। ये है केली वेणु धोनी 90.4 FM की प्रस्तुति। नमस्कार।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं वेणुध्वनि 90.4 एफएम केएलई कनसू। यादों की बारात लेके आई हूं मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे स्वरा।

दोस्तों, यादों की बारात में हम हमेशा ही एक अलग थीम पे कुछ ऐसे सदाबहार नगमे सुनते हैं जो हम रोज तो नहीं सुनते, पर जब भी सुनते हैं गुनगुनाए बिना रह नहीं पाते। आज मैंने आज के थीम के तौर पर एक फिल्म चुनी है जिसका नाम है सिलसिला। कहा जाता है ये फिल्म अमिताभ बच्चन, जया भादुरी, रेखा, इन तीनों के लव ट्रायंगल पे बेस्ड है। सच झूठ तो भगवान ही जाने, पर बातें तो ऐसी ही हमने सुनी है। पर इस बात को नज़रअंदाज करते हुए इस फिल्म के बारे में कुछ जानकारी मैं आपको आज के शो में दूंगी जो शायद कुछ लोगों को पता नहीं है। शुरू करते हैं आज का शो और सुनाती हूँ आज का पहला गाना। सिलसिला का टाइटल ट्रैक है देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए।

वेलकम बैक दोस्तों, इस खूबसूरत से गाने के बाद मैं आपका फिर से स्वागत करती हूँ। आप सुन रहे हैं वेणु ध्वनि 90.4 FM KLE कनसूर। यादों की बारात लेके आई हूँ मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे स्वरा। सिलसिला 1981 की एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसके डायरेक्टर है यश चोपड़ा। फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, संजीव कुमार, रेखा, कुलभूषण खरबंदा ने इस फिल्म में काम किया था और इसी के साथ शशि कपूर जी ने इस फिल्म में स्पेशल अपीयरेंस दिया था। ये वो जमाना था जिस जमाने में अमिताभ बच्चन, रेखा जी और जया जी के लव ट्रायंगल की खूब चर्चा होती थी। और तब जब ये तीनों एक फिल्म में काम कर रहे थे तो सबको यूं ही लगता था कि ये इन तीनों के ऊपर आधारित फिल्म है। पर यश चोपड़ा जी ने अपने जन्मदिन के मौके पर बताया कि वो सबसे पहले परवीन बाबी, स्मिता पाटिल और अमिताभ जी को कास्ट करना चाहते थे, पर बहुत चर्चा होने के बाद ये डिसाइड हुआ कि जया बहादुरी और रेखा जी को इस फिल्म में लिया जाए। कहा यूं भी जाता है कि रेखा जी ने इस फिल्म में काम करने के लिए हाँ कहकर एक बहुत बड़ा एहसान किया था अमिताभ जी के ऊपर। इसके बारे में मैं आपको डिटेल्स बताऊंगी, पर उससे पहले सुनते हैं अगला गाना, लड़की है या शोला। आप सुनते रहिए वेणु ध्वनि 90.4 FM KLE कनसू, यादों की बारात।

ऐसी बातें बता रही हूँ जो शायद आपको पता नहीं होंगी। हम कास्टिंग की बात कर रहे थे तो मैंने आपको बताया कि यश जी सबसे पहले परवीन बाबी और स्मिता पाटिल को अमिताभ जी के सामने कास्ट करना चाहते थे, पर फिर बहुत सारी चर्चाओं के बाद जया और रेखा जी का नाम फाइनल किया गया। और जया जी ने, अमिताभ जी का करियर कुछ ठीक से काम नहीं कर रहा था, जया जी ने ये समझा कि अमिताभ जी के साथ अगर रेखा और जया, ये दोनों ही, वो खुद और रेखा जी काम करते हैं तो उनके बहुचर्चित लव ट्रायंगल के चलते हुए लोग ये फिल्म देखने खींचे चले आएंगे और अमिताभ जी का जो करियर जो थोड़ा सा स्लो हो गया है उसे थोड़ी सी गति मिल जाएगी। और सिर्फ अमिताभ जी के करियर के लिए उन्होंने इस फिल्म में काम करने के लिए हाँ की थी। ये भी एक कही सुनी बात है, सच झूठ क्या है वो तो वो लोग ही जाने। खैर आगे बढ़ते हैं और सुनाती हूँ आपको अगला गाना, सर से सर के। सुनिए ये खूबसूरत सा गाना और सुनते रहिए वेणु ध्वनि 90.4 FM KLE कनसू, यादों की बार।

0: कास्टिंग के बारे में बात करते हुए यश जी कहते हैं कि मैंने इन तीनों को इस फिल्म में कास्ट तो कर लिया, पर मुझे बहुत डर लग रहा था कि कहीं कोई प्रॉब्लम खड़ी ना हो जाए। पर तीनों ही आर्टिस्ट ने मुझे प्रॉमिस किया कि ये शूटिंग ख़त्म होने तक और ये फिल्म बनने तक, रिलीज़ होने तक, वो आपस में कोई प्रॉब्लम नहीं खड़ी करेंगे। और ऐसा ही हुआ। तीनों ही आर्टिस्ट ने बहुत ही प्रोफेशनली और बहुत ही अच्छी तरह से इस फिल्म में काम किया, एक दूसरे के साथ अच्छे से बिहेव किया और कोई भी कॉन्ट्रोवर्सी या कोई भी प्रॉब्लम खड़ी होने नहीं दी। और इसीलिए यश जी तीनों आर्टिस्ट का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। इसी के साथ सिलसिला के बारे में और कई सारी बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगी, पर अगला गाना हम सुनेंगे, ये कहाँ आ गए हम। ये मेरा पर्सनल फेवरेट गाना है। ये गाना मुझे तब से पसंद है जब मुझे पता भी नहीं था कि ये किस फिल्म का गाना है। खैर, आप सुनिए ये खूबसूरत सा गाना और सुनते रहिए वेणुध्वनि 90.4 FM KLE कनसु, KLE कनसु।
1: मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती, तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती, तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें। हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

वेलकम बैक दोस्तों, यादों की बारात का हमारा खूबसूरत सा सफर चल रहा है और मैं हूँ आपकी होस्ट, दोस्त और हम सफर आरजे स्वरा। दोस्तों, अमिताभ जी ने शशि कपूर जी के बड़े भाई का रोल निभाया है कई फिल्मों में। फॉर एग्जाम्पल, दीवार, सुहाग, दो और दो पांच, नमक हलाल, सिलसिला एक ही ऐसी फिल्म है जिसमें अमिताभ जी ने शशि जी के छोटे भाई का रोल निभाया है। ये भी एक अलग बात है अपने आप में। ये बात मुझे खैर पता नहीं थी, पर जिन लोगों ने ये सारी फिल्में देखी है उनको तो ये बात पक्का पता होगी। शो में आगे बढ़ते हैं और आपको सुनाती हूँ अगला गाना, रंग बरसे भीगे चुनर वाली। ये भी मेरा एक फेवरेट गाना है और इसके इस गाने के बारे में मैं आपको और जानकारी दूंगी, पर पहले ये गाना सुन लीजिए। सुनते रहिए वेणु ध्वनि 90.4 FM KLE कनसू।

दोस्तों, इस फिल्म का म्यूजिक कंपोज किया है शिव कुमार शर्मा और हरिप्रसाद चौरसिया जी ने। इस फिल्म का म्यूजिक पहली ही बार में हिट हो गया था। फिल्म भले ही ठीक रही, सुपर हिट नहीं हुई, पर एवरेज पैसा कमाया, पर इसका म्यूजिक बहुत ही फेमस हुआ था। अमिताभ बच्चन जी ने फिल्म के म्यूजिक में बहुत इन्वॉल्वमेंट दिखाई थी। और जो एक फोक सॉन्ग है इस फिल्म का, रंग बरसे, जो हमने अभी अभी सुना, उसका पिक्चराइजेशन भी बहुत खूबसूरती से किया गया था। और उस दिन के बाद से ये एक आइकॉनिक होली सॉन्ग माना जाता है। होली के सीजन में अगर आपने ये गाना नहीं सुना तो आपकी होली इनकम्प्लीट मानी जाती है। इसका कंपोजिशन किया था अमिताभ जी के पिताजी हरिवंश राय बच्चन जी ने। इसे आवाज़ दी है अमिताभ जी ने। ये कहाँ आ गए हम, ये गाना भी अमिताभ जी और लता मंगेशकर जी ने अलग अलग गाया हुआ है, यानी एक मेल वर्जन है और एक फीमेल वर्जन है। कई सालों बाद वो जब एक दूसरे से मिले, तब उनको लगा कि यार, हमने साथ में रिकॉर्डिंग क्यों नहीं की, ये गाने इतने खूबसूरत सुनाई पड़ते हैं। खैर, आपको सुनाती हूँ अगला गाना, जो तुम तोड़ो पिया। लता मंगेशकर की खूबसूरत आवाज़ है इस गाने में, और ये भी गाना मेरा पर्सनल फेवरेट है। सुनते रहिए वेणु ध्वनि 90.4 FM KLE कनसूस, यादों की बारात।

दोस्तों, यादों की बारात में हम आगे बढ़ते हैं और अगला गाना आपको सुनाती हूँ, नीला आसमान। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजेस्वरा, आप यादों की बारात सुन रहे हैं। इस फिल्म का गाना नीला आसमान, कहते हैं इसको कंपोज किया था अमिताभ बच्चन और शम्मी कपूर जी ने फिल्म जमीर के शूटिंग के दौरान। और जब सिलसिला के म्यूजिक के बारे में चर्चा होने लगी, डिस्कशंस होने लगे, डिसीजंस लिए जाने लगे, तब अमिताभ बच्चन जी ने शम्मी कपूर जी को कॉल करके पूछा कि क्या हमारी जो ट्यून हमने बनाई थी, कंपोज की थी, क्या मैं उसको मेरी अगली फिल्म में इस्तेमाल कर सकता हूँ। और मज़े की बात यह है कि शम्मी कपूर जी इस ट्यून के बारे में बिल्कुल ही भूल चुके थे। फिर अमिताभ बच्चन जी ने उनको याद दिलाया, शम्मी कपूर जी ने खुशी खुशी उस ट्यून को इस्तेमाल करने के लिए परमिशन दे दी। तो इसे गाने को सुनते हैं, नीला आसमान। इसे गाया है लता मंगेशकर जी ने। सुनिए यह खूबसूरत सा गाना और लौट के आइए 90.4 FM KLE कनासूर पर।

0: वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं वेणु ध्वनि 90.4 FM KLE कनसु। धीरे धीरे अब हम हमारे शो के अंत की ओर पहुंच गए हैं, पर कुछ बातें और भी आपको बतानी बाकी है जो मैं आपको जाने से पहले जरूर बताऊंगी। संजीव कुमार ने पहले तो इस फिल्म को मना कर दिया था। उनके हिसाब से वो इस फिल्म में काम नहीं करना चाहते थे, क्योंकि इससे पहले भी वो ऐसी फिल्मों में काम कर चुके थे जहाँ पे अमिताभ जी का लीड रोल था और सेकेंड लीड संजीव कुमार जी का था, तो वो वही ट्रेडिशन आगे बढ़ाना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने मना किया। पर बहुत समझाने के बाद जब यश चोपड़ा जी ने उनको स्क्रिप्ट सुनने के लिए बिठाया, आधी स्क्रिप्ट सुनी और उन्होंने इस फिल्म में काम करने के लिए हाँ कर दी। उन्होंने उस सीन तक स्टोरी सुनी थी जिस सीन में अमिताभ बच्चन, रेखा, जया बच्चन और संजीव कुमार खाने पे मिलते हैं, किसी रेस्टोरेंट के टेबल पर बैठे हुए होते हैं और अमिताभ जी रेखा जी के साथ डांस करने के लिए चले जाते हैं और फिर संजीव कुमार और जया बच्चन जी के बीच में बातें होती है।
1: ಇದುವರೆಗೆ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರಿ ವೇಣುಧ್ವನಿ 90.4 FM, ಇದು KLE ಕನಸು, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು ನಮ್ಮ ಪ್ರಸಾರ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗ್ತೇವೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆಳಗಿನ 6 ಗಂಟೆಗೆ. ನಮಸ್ಕಾರ.

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेड़ोथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों के बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों के बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन। एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

धोनी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

है सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों के बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों के बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

0: प्यारे,
1: जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने के बोल है, मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

पूर्णधुनी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

सुनते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है, तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों के बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों के बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल ना पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

धुनी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

है सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना और

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेड़ोथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल ना पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन। एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज़ में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

है सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेरुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चले सुनते प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

ओनली 90.4 के LE कनसूबे आप ट्यूने यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

है सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेड़ोथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन। एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है। लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की बारात में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

पूरी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

बदलते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना और

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों के बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों के बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल ना पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसूबे आप ट्यून है, यादों के बारह हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

है सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेड़ोथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन। एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने के बोल है, मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

धुनी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

है सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना और

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल ना पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन। एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

धूली 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

सुनते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

0: नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेरुथोनी 90.4 KLE कलसुम और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल ना पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।
1: या

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन। एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की बारात में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

90.4 के LE कनसूबे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही, इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

करते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है, तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेरुथोनी 90.4 KLE कलसुम और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल ना पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

ओनली 90.4 के LE कनसूबे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

0: प्यारे,
1: जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।